0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

छ्याजलो रेडियो मर्सङ्गी 95 MHz दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org नाना 8 बजे खबर तमुकी मर्सङ्गी फेतेरी गा खुशीमाया तमुसोला देवा म ऐश्वर्य क्रर्व फेतेरी

भर्सुङदी नगरपालिकाको चाहिँ आर्थिक वर्ष ऐना लागि तारखबा आर्थिक वर्ष ऐना लागि 68 करोड़ 73 लाख रूपियाँ मुई पोखैमु कृषि शिक्षा दिएर स्वास्थ्य दिए उहाँ साथ दिए म प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार लमजुङ्गा री 9000 फर्ममा आर्थिक गणनाली पारदिनु दे पारदिनी खेल फेरि प्रोत्साहन लबै लागि मर्सुङदी नगरपालिकाजी 25 जना खेलाड़ी मैले मुई देवालो सम्मान लैमु दे सार्वजनिक सवारी साधन अनुगमन चालक महिना स्वास्थ्य समेत जहाजीवा दिएर लापसी समेत जहाजीवा लैमु मर्सुङदी नगरपालिकाजी तारखा महिना आर्थिक वर्ष 83-84 लागि 68 करोड़ 73 लाख 18,500 रूपियाँ मुई सार्वजनिक लैम नगरपालिकाजी 21 नगरसभारी प्रस्तुत लभ मुहिरी कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्यटन दिए सामाजिक सुरक्षा दिए वैश्व सारदी म बुधबार आयोजना लभ नगरसभारी तारखा आर्थिक वर्ष नीति दिएर कार्यक्रम दिएर मुई प्रस्तुत ललो नगरपालिकाइन अनुसार जल विद्युत ऐन आमदानी उज्यालो मर्सुङदी लगानी विवाह कार्यक्रम नहरी 50 युनिटसम्म विद्युत उपभोग विद्युत चलेवा तीन धुरी मैदे मुई आफू नै हो चलेलिउँबाई लागि 55 लाख रूपियाँ मुई विनियोजन लै म कृषि दिएर पशुपन्छी विकास कार्यक्रमै लागि 1,85,00,000 रूपियाँ दिएर शिक्षा क्षेत्र दिशा 1,94,50,000 रूपियाँ मुई छुटे म चलायो मर्सुङदी अस्पताल चलेबाई लागि दिएर स्वास्थ्य कार्यक्रमै लागि 1,57,82,000 रूपियाँ मुई विनियोजन लैमु बाल उद्यान दिएर खुल्ला व्यायामशाला बनेबाई लागि 50 लाख रूपियाँ मुई छुटे बनासपालिका म सामाजिक सुरक्षा थरपरी 60 लाख 69 वर्षसम्म क्रियो टिभा पिउमैदे भत्ता दिएर ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमै लागि 19 लाख रूपियाँ दिएर गबर गर्वे अपाङ्ग तब महिना लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पिबाई लागि 13 लाख रूपियाँ मुई विनियोजन लैम सभा मर्सुङदी नगरपालिका अभियान दे निरन्तरता पिबाई लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन लबै लागि 10 लाख रूपियाँ दिएर विपद व्यवस्थापनै लागि 20 लाख रूपियाँ मुई छुटे म फ्रेसी महिना लागि खेलकुद शिपमूलक तालिम दिएर सचेतनामूलक कार्यक्रम लबै लागि 17 लाख दिएर खेलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रमै लागि 5 लाख रूपियाँ मुई विनियोजन लै म पर्यटन प्रवर्धनै लागि 69 लाख रूपियाँ विद्युतीय चुलैन प्रयोग र अनुदान लबै लागि 5 लाख रूपियाँ मुई दिएर बजार क्षेत्रले सीसी क्यामेरा जोड़ दिबै लागि 6 लाख रूपियाँ मुई व्यवस्था लै म छलायो धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक दिएर महोत्सव कार्यक्रम सञ्चालन लबै लागि 15 लाख रूपियाँ परम्परागत क्विन घट्टा संरक्षण लबै लागि 3 लाख रूपियाँ नगरपालिका दिएर वडा कार्यालय मिनी लाइब्रेरी बनेबाई लागि 10 लाख रूपियाँ मुई विनियोजन लै म अनातेर विपन्न कोलमैन लागि कोलमैन संरक्षण कोष स्थापना लबै लागि 2,50,000 रूपियाँ मुई छुटेछु विषय संघ प्रदेश सरकार दे बालो समपूरक कोष कार्यक्रमै लागि 5,80,00,000 रूपियाँ विनियोजन लै म राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय लमजुङजी लब आर्थिक गणनाली लमजुङ्गरमै 9000 फर्म गणनाली पर्दिम यब वैशाख 2 गते त क्या असार 7 गतेसम्म लब आर्थिक गणनाली जिल्ला फरिभयो करिब 9000 फर्म गणनाली पर्दिबा बीम जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी कृतिका चौधरीजी करिब 9000 फर्म गणनाली पर्दिबा दिएर गडक द क्या खब तथ्याङ्क नै रुजुइन के तरिब अन्तिम रुजु लब के छिबा लिस्नु अझ डाटा खबर बीम आर्थिक गणनाली जिल्लाभरि संचालन तय खब उद्योग व्यापारिक प्रतिष्ठान सामान्य दोकान चिया पसल होटल दकिया लैमरी त्यो चौना दिएर थेवाले तय प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप होइन गणना समेत लभा बीम गणना के अरे गडक 24 जना दिएर सुपरिवेक्षक 16 जना लैमरी 36 जना फिल्लरी खटेलो लमजुङ्गा रोप सप्ताही भन्दा बढी बेसर 7 रेस बेसारी 7 जना सुन्दरबजारी 5 जना मध्यनबारी 4 जना रयनस मर्सुङदी दोर्दी नगरपालिका न्याउलो न्याउलो जना दिएर दुध पोखरी 13 कोलासोतरी 3 जना गडक मुलो लमजुङ्गरमा मर्सुङदी नगरपालिकाजी पालिका नोर्वे फुटबल दिएर भलिबल क्लै खबा खेलाड़ी मैले सम्मान दिएर प्रोत्साहन लैमो आर्थिक वर्ष 82-83 स्वीकृति कार्यक्रम दिएर
मुई अनुसार वै संचालन लब फुटबल देरा भलिबल खेलाड़ी सम्मान देरा प्रोत्साहन कार्यक्रम नोरी खेलाड़ी मैं सम्मान लैम कार्यक्रम नासापालिका वै अध्यक्ष अर्सन तमुई न अध्यक्ष तरी तल हो कार्यक्रम पै मध्य अध्यक्ष तमुजी खेलकूद क्षेत्र विकास फ्रेसी मैन क्षमता अभिवृद्धि दिए अनुशासित दिए स्वस्थ समाज बनेवे लगी खेलकूद ऐन महत्वपूर्ण भूमिका मोबाइल पीएम अतिथि तारकावती नारे भिनी खेलाड़ी मैन स्नेह थेवा लबई लमीवै लगी नासापालिक आवश्यक सहयोग दिए प्रोत्साहन दे निरंतरता पीवा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त लैम लमजुंगे सार्वजनिक सवारी साजनजी तोकदीव भन्दा लेही यो मुई किबा किबा विषयरी देर मूल्य सूची टाँसला आलेबा बारेरी अनुगमन लैम जिल्ला ट्राफिक कार्यालय लमजुङ अस्थायी प्रहरी भीट पाउँदी दिएर अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट पलेटार पाउँदिन संयुक्त आयोजनरी बुधबार लमजुङ गर्वे सुन्दर बजार नगरपालिका सातर मुबा जिल्ला मुख्य प्रवेश क्यारी पाउँदी क्षेत्री मुबा डुम्रे बिसर चामे क्यानोरी अनुगमन लैम अनुगमन क्रमरी सार्वजनिक यातायात 40 वटा सवारी साधन तोकदीवा भाड़ा कार्यान्वयन मुबा आरेबा बारेरी देर यात्रु दे भाड़ा बढ़ी किबा बारेरी देर मूल्य सूची टाँसला आलाबा सम्बन्धी निरीक्षण लब जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लमजुङ प्रमुख गौतम खत्रीजी बीम छलायौ यात्रु दे सुरक्षित मध्यनजर लैमरे चौना देर थेवा सार्वजनिक सवारी साधन दे 21 चालक ल स्वास्थ्य परीक्षण समेत लबा बीम मुहिना व्यवसाय लखलय खबा व्यवसाय संघ जिल्ला शाखा लमजुङजी भेषा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मुबा चण्डेश्वरी प्राथमिक विद्यालय री स्टेशनरी दिएर थिनी प्रयोग पीम सँगै नै 53 स्थापना दिवस अवसरहरी बुधबार विद्यालय रह्यो थोनीमारी चरीखे खब 25 जना कोलमैदे स्टेशनरी दिएर थिनी प्रयोग पीबा विद्यालय शिक्षक राजन भट्टाजी बीम विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दण्ड बहादुर गोदार थापेन अध्यक्षतरी तब कार्यक्रम रे महिना व्यवसायलाई खबा जिल्ला संगर्वे जिल्ला शाखा अध्यक्ष धन बहादुर अधिकारीको सदस्य रमेश दुलाल सदस्य सुभाष दनाई शिक्षक अभिभावक संगर्वे अध्यक्ष सीता बिकैना उपस्थिति मूल कार्यक्रम सहजीकरण विद्यालय प्रधानाध्यापक गीता भण्डारीजी विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी मेन सहभागिता संगजी सामाजिक केलाई खबा देवालय स्थापना दिवस समेत मनिभा बीमो मर्सङ्गी फेटी तोखोबे लागि छोगयो फेटी छौ भन्दा उइसो कर्प फेटी फेरि तिखे।

मर्सुङदी नगरपालिका चाहिँ आर्थिक वर्ष ऐना लागे 68 करोड़ 73 लाख रूपियाँ मुई पोखैमो कृषि शिक्षा दिएर स्वास्थ्य दिए 960 प्राथमिक तथ्याङ्क अनुसार लमजुङरी 9000 फर्म आर्थिक गणना पारदिमो खेल फिर प्रोत्साहन लगाए लागे मर्सुङदी नगरपालिका चाहिँ 25 जना खेलाड़ी मुईदे बालो सम्मान लैमो देश सार्वजनिक शहरी साधन ऐना अनुगमन चालक मेला स्वास्थ्य परीक्षण दिएर लापसी समेत जाँच दिमो नानर खबर तमुगी मर्सुङदी फेटे तखोबे लागे छिजी प्राविधिक थोदी बेसे धन्यवाद बिमारी फेटे गर्छ क्याङ खुसी माया तमुसो बिदा किमो रेडियो मर्सुङदी 95 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सुङदी .org गेरिन देलात ओ छ्याजलो

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्जी एफएम 95 मेगाहर्ज।
1: सुन्दर, मनमोहक र आकर्षक गरगहनाको लागि विगत चार दशकदेखि सेवारत अमृत सुन चाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी सहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी सहर।
2: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनका गरगहना,
1: हार, मंगलसूत्र, छड्की तिलहरी, मिनी तिलहरी, औठी, सिकरी, टप, झुम्का, चुरी, टिकिया, चन्द्रमा किलिप, पंखे चन्द्रमा, विभिन्न किसिमका जन्तर लगायतका सम्पूर्ण गरगहना।
2: सुन चाँदी खरिद बिक्री र पुराना गरगहना साथ फेरका लागि अमृत सुन चाँदी पसल।
1: रेडीमेड एवं अर्डर अनुसारका आधुनिक र परम्परागत आकर्षक गरगहना,
2: चाँदीका सामान र राशि अनुसारका पत्थरका लागि
1: अमृत सुन चाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी सहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी सहर। प्रोप्राइटर रविलाल विश्वकर्मा, अमृत विश्वकर्मा, फोन 0665201152,
2: मोबाइल 97460054।
1: शुद्धता र विश्वसनीयता हाम्रो प्रतिबद्धता।
3: समिति चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
4: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
5: आंगी समी जो लोटरी पढ़ती हूँ छापता ही गुदी
4: भर दी आप भर दिवा लोटरी खाली पढ़ दिन बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्थे कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
5: सिद्धार्थ ब्याकर क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
6: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: খুঁজি ভান্ডা ওইসু সু খান ক্যা খালো সুজি পিমিলো খান ইয়ামো বিমারি চ্যানেলে খোনা দে খুঁজি বা ওয়েবসাইট না ইউআরএল চেক লানা আচ্ছা ঘটনা তলা আপি বাই লাগি সময় সময়রি আপাই না পাসপোর্ট ফের দিল পারিম নুয়ে তো তারি শঙ্খলাইদি ভিসা ব্যাঙ্গরি ইয়াই মারি তুরন্ত খবর লানা
1: সতর্কতা না ঠগে তব ক্যা যোগে না
2: সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্গর ক্যালে জনহিতরি জারি সন্দেশ
3: সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধ সদাই ভারি লাই
4: घर बनाउने त भनियो ठेकेदार साहब तर निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने हो बजारमा धेरै हार्डवेयरहरू छन् अलि गुणस्तरीय सामग्री पाइने विश्वासिलो हार्डवेयर चाहिँ कुन होला है
5: अब धेरैजनाले खोज्ने गरेको त बेसी सहर सातमा रहेको हिमालयन ब्रदर ग्रुपद्वारा सञ्चालित हार्डवेयर तथा कारखाना नै हो दिदी फेरि त्यहाँ त विभिन्न निर्माण योजनाहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि तपाईँ पनि त्यही जानुहोस् न
6: हाम्रा सेवाहरू एमएस पाइप फलाम आल्मुनियम स्टीलका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै ट्रस ग्रिल सटर आल्मुनियम पार्टिसन र स्टील रेलिङका कार्यहरू दक्ष एवं अनुभवी कालीगढद्वारा प्रत्यक्ष निगरानीमा जडान गरिन्छ गुणस्तरीय छड सिमेन्ट इटा रंगरोगन लगायत भवन निर्माणका सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ
4: हिमालयन ब्रदर ग्रुप प्राली विशेषर नगरपालिका साथ युनिभर्सल चोक लमसुङ थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0665520973 मोबाइल 97463061
5: तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना
7: ए साइली घर बनाएर त लगभग सक्न आँटिसौ त
8: के सकिन्थ्यो दिदी अझै झ्याल ढोका च्यानल गेट आदि सबै काम बाँकी छ बल्ल बल्ल आँटेर बनाएको साँच्चै दिदी आल्मुनियमको झ्याल ढोका र च्यानल गेट कहाँ पाइन्छ होला
7: हाम्रै बेसेसरको युनिभर्सल चोकमा रहेको थ्री स्टार आल्मुनियम फेब्रिकेटर पसलमा जाऊ न त्यहाँ त आल्मुनियमको झ्याल ढोका पार्टिसन ग्लेजिङ आदि निर्माण गरी घरमै गई जडान समेत गरिने व्यवस्था छ नि
5: हजुर आल्मुनियमको आकर्षक झ्याल ढोका पार्टेसन ग्लेजिङ पाइनुका साथै फलाम सिसाको टपन ग्लास रेलिङ र पार्टेसन ग्लेजिङ लगायत यूपीभीसी सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्
4: थ्री स्टार आल्मुनियम फेब्रिकेटर विशेषर नगरपालिका साथ युनिभर्सल चोक लमसुङ प्रोभाइडर मदन सुनार थप जानकारीको लागि सम्पर्क 9864

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.
2: नुमान ढिलो भइसकेर जाम सबैजना गाडीमा चढिसके.
3: नाइ मते नजाने सिमरन आ छैन.
2: ओ सिमरन आयो.

0: हनुमान, ढिलो भइसकेछ, हामी सबैजना गाईमा चढिसकेन।
1: नाइ, म त नजाने सिमरन नै आज होइन।
0: ओ सिमरन आयो।

0: सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जियौ।
1: मर्सङ एफएम 95 मेगाहर्ज
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
4: किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
5: राष्ट्र को शान किसान
4: अ कम्प्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी